तीर्थ उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नूं विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे हां यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउंगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजिया ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तो अपनी राह तो चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन

नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारां ने चुक के बाहर मारे। पंडतां ने आखिया तू नीवी जात विचों एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गई। कहिंदे ने मोढ़े ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

कीमत अदा नहीं हो सकती। जिस वस्तु दी ओ मिल जावे तां उसनू प्राप्त कहिंदे हां। आख्या तू 84 लख जूना विचों, त्रिगण जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई, तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है। ते एहो ही तेरी बारी है, एही वक्त है, तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे, जन्म मरण तो रहत हो जावे। ते जे ना कीता तो फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू।

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता। इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिले, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदिया ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समय सिमरन विच जप तप विच बतीत होंदा है, समा ओ सफल है

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलो डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना

उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजै जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वटा शायमियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है पर उस गोपाल

एक आकाश दस ए परमेश्वर दा सरायचा है तंबू है इंसान जहाजा ते चढ़ लवे राकटा ते चढ़ लवे कितना भी यतन कर लवे

ते बादशाह कहन लगा है नामदेव मैं सुने है अल्लाह तेरा यार है तू जो कहना है

रामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नूं जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच

ता नाम देव जी ने कहा ऐ परमेश्वर और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई वच्छे समेत ते नाले दुध दिया

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

पीसे जा, तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ किम पीसे जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत वाणी बोले मिठी हो जाती है। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नू

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कहंदे ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं। जदों पंडतां ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता। तो भगत जी कहंदे ने अगर वो दयाल हो जाए

उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान किया, जांचे कर निकटवर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरे, प्रणवे नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना बयांत है, ए जो मैं दस्से है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवे नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

नानक मिखे समस्त एक जोत है न घट है न बड है न घट बड होता है न हन है न बन है समान।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है।

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली पात, कहूं असब होए के बह बेग ऐसे कथो मैं न आऊं कथो तो है कैसे, कहूं न आऊं कथो तो है कैसे कथो।

मल तारी गज गद हब भूत तारी किदुआ मसान बस करे ओही करत है। खूक मल तारी गज गद हब भूत धारी किदुआ।

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है,

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोची, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वह मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझ रहे हां। हालांकि साहिबां ने पावन

नानक काफी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जावे जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ के पाते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठकावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे पढ़ापत होए। कर्ण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दिस करे तैसा होए, आपे आप आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साध ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किच होए, थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिल चीना। पला पला पला तेरा रूप, अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी